उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। माय डियर फ्रेंड्स, ब्लेसिंग ऑफ यू, ब्लेसिंग्स टू आवर स्पॉन्सर्स फॉर टुनाइट, बोथ एट द मंदिर एंड टीवी एंड रेडियो जागृति। Blessings to the management, the staff, the technicians of TV and Radio Jagriti. Sri Bhavani Ma's blessings to you to continue to prosper and remember to pray for happiness. Blessings to the members of the Kirtan group, the behind the scenes individuals. May Bhavani Ma bless each and every one of you.

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री व्यास देवाय नमः, ओम नमो परमात्मने नमः। शुभ स्वागतम, वेरी स्पेशल वेलकम टू द प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम हर्ड ऑन रेडियो जागृति।

दुर्गा माता की जय। वन डे इन स्कूल दे सर ए बॉय बिहेव योर सेल्फ वन फॉर से टीचर टॉकिंग टू यू बिहेव योर सेल्फ वन लिटिल बॉय टोल्ड मी द अदर डे।